0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 एफएम।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: बीबीसी दुनिया में आज देखिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दिया न्योता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लिखा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ओपन लेटर। कहा जंग खत्म करने के लिए होनी चाहिए सीधी मुलाकात। बुलेटिन में दिखाएंगे क्या ये प्रस्ताव मान लेंगे पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले लेबनान में जंग खत्म करने के लिए हिजबुल्ला से की सीधी बातचीत। वहीं सीज फायर के बावजूद इसराइल ने फिर किए गजा में हमले। दिखाएंगे रिपोर्ट। शेयर बाजार में आई तेजी से हर दिन टूट रहे हैं नए रिकॉर्ड। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में जल्द आ सकती है बड़ी गिरावट, जानेंगे प्रोग्राम में। अब आ रही है एआई से डिजाइन की गई वैक्सीन।

0: कामयाब हुए साइंटिस्ट्स, जानेंगे कैसे दुनिया को महामारी से बचाएगी तकनीक, और दिखाएंगे कैसे अफगानिस्तान तक पहुंच रहा है पाकिस्तान का जायका। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। लगभग 5 सालों से चल रही रूस यूक्रेन जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति को एक ऑफर दिया है कि वो दोनों मिलकर बात करें। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को एक ओपन लेटर लिखकर सीधी मुलाकात का न्योता भेजा है ताकि आमने सामने बातचीत करके जंग खत्म की जा सके। हालांकि इसमें उन्होंने तंज भी कसा है और लिखा है कि 26 साल सत्ता में रहने के बाद अब पुतिन पर उम्र का असर दिखने लगा है। हालांकि रूस से जारी संघर्ष के सिलसिले में जेलेंस्की ने लेटर में कहा है कि अमेरिका इस जंग पर दोबारा ध्यान दे, इस बात का इंतजार करना गलत होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि रूस के लोग अब यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों से, पेट्रोल की कमी, बढ़ती कीमतों और लगातार जारी जंग से थक चुके हैं। इसके जवाब में रूस ने हमेशा की तरह यह कहा कि जेलेंस्की मॉस्को आकर पुतिन से मिल सकते हैं। यह लेटर भेजे जाने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि समझौता किन शर्तों पर हो सकता है।
1: हम शांतिपूर्ण तरीकों से यूक्रेन के साथ समझौते तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये उसी आधार पर होगा जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एंकोरेज में हुई हमारी बैठक के दौरान चर्चा हुई थी। उस बैठक में रूस से कुछ समझौतों पर विचार करने को कहा गया था। रूस उन शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन को भी इन समझौतों पर राजी होना होगा और फिर ये जंग खुद खत्म हो जाएगी।
0: यह लेटर उस वक्त पब्लिश किया गया है जब रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। जेलेंस्की ने ओपन लेटर के लिए यह वक्त क्यों चुना, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता बिताली शेवचेंको।
2: असल में ये बस संदेश देने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम यूक्रेन की तरफ से ऐसे प्रस्ताव पहले भी देख चुके हैं। वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक का सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने फ्रंटलाइन पर जंग पूरी तरह रोकने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। इस लेटर में उनका लहजा कुछ हद तक पुतिन का मजाक उड़ाने वाला, बल्कि अपमान करने वाला भी लगता है। उन्होंने लिखा है कि बढ़ती उम्र का असर अब दिखने लगा है और ये भी कहा कि रूस जंग के मैदान में बहुत ज्यादा लोगों को खो रहा है। तो जेलेंस्की ये कहना चाहते हैं कि पुतिन को असल में उनके साथ बैठकर बातचीत करने में दिलचस्पी लेनी चाहिए।
0: इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रिश्तों पर और पाकिस्तान चीन के संबंधों पर भी बयान दिया है। क्या अमेरिका और भारत के बीच सहयोग रूस और भारत के रिश्ते में मुश्किल का कारण बन रहा है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में, मसलन रूस के साथ सहयोग के मामले में, अमेरिका भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें बेकार हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूस भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर मानता है और वो भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते के बारे में पुतिन ने कहा कि रूस भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों की पेचीदगी को अच्छी तरह समझता है। और चीन के साथ रिश्तों को लेकर पुतिन ने कहा कि चीन के साथ रूस के संबंध भारत को परेशान नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने लेबनान में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए हिजबुल्ला से, जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, उससे सीधी बातचीत की है।
3: लेबनान पर कई सालों से हमले हो रहे हैं और लेबनान को हमेशा इससे नुकसान पहुंचता है। अगर ये संघर्ष खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने इस बारे में बीबी नेतन्याहू से बात की है और मैंने वास्तव में हिजबुल्ला से भी बातचीत की है और मुझे लगता है कि बात कुछ आगे बढ़ी है।
0: और ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हिजबुल्ला ने इसराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की अगुवाई में हो रहे संघर्ष विराम की शर्तों को खारिज कर दिया है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक रात भर हुए इसराइली हवाई हमलों में दक्षिणी शहर टायर में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। इसराइली सेना ने चेतावनी दी है कि वह दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के उत्तर में मौजूद 3 गांवों पर हमला करेगी। बेरूत में मौजूद बीबीसी संवाददाता लीना सिंजाब का कहना है कि संघर्ष विराम को लेकर लेबनान में लोगों के बीच संदेह और निराशा बढ़ रही है।
4: It's not compared with days that...
5: दक्षिण लेबनान में पहले की तरह हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई रुक गई है। कल भी हवाई हमले हुए और लोगों को इलाका खाली करने के नए आदेश जारी किए गए। यानी जंग का शोर, युद्ध की कार्रवाई दक्षिणी लेबनान में अब भी जारी है। दक्षिणी इलाकों के लोगों में ये डर बना हुआ है कि वे अपनी जमीन खो सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसराइली सेना पूरी तरह पीछे हटेगी। ये भी तय नहीं है कि वो देश के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जारी नहीं रखेंगे, जहां से हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। यही वजह है कि ये लोग इस

0: समझौते से नाराज और निराश हैं।
1: इसराइल हमास के बीच भी सीजफायर लागू है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल गजा में हमले कर रहा है। गजा में मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक कल इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 11 फलस्तीनी मारे गए, जबकि कई लोग जख्मी हैं। बीबीसी को गजा के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम वहां मौजूद भरोसेमंद पत्रकारों और फ्रीलांसर्स पर निर्भर हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता ओरे डेविस की रिपोर्ट।
2: सिराज अबू मराक गजा में अपने घर के मलबे में अपने बेटे और बहू के अवशेषों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए सीज फायर को 8 महीने हो गए हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक नए दौर की शुरुआत बताते हुए कहा था कि ये मौका है जब पुरानी कड़वाहटों को मिटाया जा सकता है। यहाँ दो लड़के जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और एक दुखी और घायल बुजुर्ग शख्स हमें मिले।
3: ये
4: मैं लड़कों से बार बार पूछ रहा था सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वो मुझे सिर्फ बैठने के लिए बोल रहे थे। आखिर में उन्होंने मेरे बेटे और उसकी पत्नी के लिए बैग्स मंगवाए। वो मर चुके थे और उनके शरीर के टुकड़े हो गए थे। अभी तक सभी अवशेष नहीं मिल पाए हैं।
2: हवाई हमले आधी रात में किए गए। चश्मदीदों ने बीबीसी को बताया कि इसराइली हेलीकॉप्टरों ने एक साथ कई बिल्डिंग्स पर हमला किया। इसराइल का कहना है कि जिन्हें निशाना बनाया गया उनमें हमास के सुरक्षा अधिकारी और हमास के एक कमांडर भी थे, जिनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चों की भी मौत हो गई। अक्टूबर में हुए सीज फायर के बावजूद हमास पर जानबूझकर पुनर्गठन और फिर से एकजुट होने का आरोप लगाते हुए इसराइल ने गजा पर बमबारी की, लेकिन फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक तब से गजा में 940 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर समझौते के तहत इसराइल का पहले से ही गजा के 54% इलाके पर कंट्रोल है, और अब उसका कहना है कि वो अपने इस कंट्रोल को बढ़ाकर 70% कर देगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन, ज्यादा भीड़ भाड़ और बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा होगा। जहां एक तरफ दुनिया का ध्यान दूसरे संघर्षों पर फोकस्ड है, वहीं गजा में मानवीय स्थिति बेहद खराब है। बीबीसी संवाददाता उरे डेविस की रिपोर्ट।
1: और उस सवाल के बाद जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है, क्या शेयर बाजार गिरने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि अगले हफ्ते स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है और टेक्नोलॉजी शेयर्स वॉल स्ट्रीट में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन ये साल 2000 के .com बबल की भी याद दिलाता है। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल के बाद कुछ गिरावट देखी गई, क्योंकि ईरान में जारी जंग को लेकर इन्वेस्टर्स फिक्रमंद हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। तो क्या ये बबल फूटने वाला है? देखिए बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन की रिपोर्ट।
5: क्या हम एक बबल में हैं और क्या ये अब फूटने वाला है? अमेरिकी वित्तीय बाजारों में जबरदस्त तेजी आई हुई है। लगभग हर दूसरे दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। डाउ जोन्स में पिछले 5 साल में लगभग 50% का उछाल आया है। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स में 80% और टेक हेवी नैस्टैक में 96% का इजाफा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? लोगों को लगता है कि इसके पीछे AI है। AI कंपनियों और AI में निवेश करने वाली कंपनियों को इन्वेस्टमेंट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन अब फाइनेंस से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कंपनियां इतनी कीमत की हकदार हैं, या फिर हम एक AI बबल में हैं?
6: No, the number is too high because I want to make more money. I do think yes. I do think the valuation are too high.
7: A little bit, yeah.
6: No way.
7: Why?
6: Because it's good for everybody.
8: It's a roller coaster.
7: People are making comparisons to the...
5: लोग इसकी तुलना साल 2000 के दौर में .com में आए उछाल और फिर आई गिरावट से कर रहे हैं, या फिर जैसे उसके कुछ साल बाद हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया था, जिसने अमेरिका को बड़ी आर्थिक मंदी में धकेल दिया था। कुछ और संकेत भी हैं जो इन्वेस्टर्स की फिक्र बढ़ा रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। अमेरिका का कर्ज $39 trillion के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, और .com बबल फूटने से कुछ महीने पहले भी शेयर बाजार में लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे थे और टूट रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार अब गिरने ही वाला है। वैसे भी मार्केट्स में कब क्या होगा ये बताना हमेशा मुश्किल होता है।
1: और आपको याद होगा जब कोविड महामारी फैली थी, कैसे आनन फानन में वैक्सीन बनाई गई थी। अब ऐसी वैक्सीन बनाने का जिम्मा दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में वैज्ञानिकों ने कहा कि AI डिजाइन इस वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर कर भी लिया गया है। इस वैक्सीन को कोरोना वायरस की पूरी फैमिली से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। तो क्या ये महामारियों को रोक सकती है? जानते हैं इस रिपोर्ट में।
3: इन कोविड वैक्सीन्स ने महा

0: महामारी के वक्त कई जाने बचाई, लेकिन इन्हें उस वक्त बनाया गया जब वायरस फैल चुका था और कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स की वजह से इन्हें अपडेट करने की भी जरूरत पैदा हुई। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये टीम कुछ अलग कर रही है। जिस कोरोना वायरस से कोविड फैला, इस टीम ने उस कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स का जेनेटिक ब्लूप्रिंट लिया और फिर एआई को उसकी वैक्सीन बनाने का जिम्मा दिया। फिर एआई ने एक वैक्सीन बनाई जो कोविड से जुड़े कई और वायरसेस से इंसानों की सुरक्षा कर सकता है, फिर चाहे कोई नया वायरस हो या फिर वो म्यूटेट ही क्यों ना कर ले। टीम का कहना है कि पहली बार वैक्सीन का मुख्य हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजाइन किया है और फिर टीम ने लोगों पर इनका ट्रायल किया।
1: हमने ट्रायल किए जो पहली बार ये बताते हैं कि हम एक एआई वैक्सीन एंटीजन इस्तेमाल कर सकते हैं जो सुरक्षित है और जो वायरस के पूरे ग्रुप पर काम कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक किस्म के इन्फेक्शन के इलाज करने के बजाय हमारे पास ऐसी वैक्सीन है जो इन्फेक्शन करने वाले वायरस की पूरी फैमिली पर काम करेगी।
0: अभी ये जानने में वक्त लगेगा कि क्या एआई की मदद से बनने वाली वैक्सीन ज्यादा सुरक्षा देगी, लेकिन ठीक इसी तकनीक का इस्तेमाल कर ये भी देखा जा रहा है कि क्या ऐसी वैक्सीन सालाना लगने वाली फ्लू वैक्सीन को रिप्लेस कर सकती है या बर्ड फ्लू जैसी महामारी के लिए तैयारी में मदद कर सकती है जिसकी वजह से कई जानवर मारे जाते हैं, या फिर इबोला वायरस के खिलाफ सुरक्षा दे सकती है। बीबीसी संवाददाता जेम्स गैलेघर की रिपोर्ट।
2: और आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। बदलता पर्यावरण फिक्र बढ़ा रहा है, यहां तक कि इसका असर फुटबॉल वर्ल्ड कप के फैंस पर भी पड़ सकता है। दरअसल फीफा ने सुरक्षा कारणों से स्टेडियम में फैंस की पानी की बोतलों को ले जाने पर रोक लगा दी है। अब ये खेल अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में तपती गर्मी के मौसम में होने वाले हैं, तो फिर कैसे बचेंगे फैंस इसके असर से? देखिए बीबीसी संवाददाता कैटी गॉर्नल की रिपोर्ट।
3: फैंस बनाम गर्मी, ये पिछले साल अमेरिका में हुआ क्लब वर्ल्ड कप था, जब तपती गर्मी की वजह से लोगों को छाया और पानी के लिए खूब भाग दौड़ करनी पड़ी थी। इस गर्मी में क्या होने वाला है, ये उसकी झलक भर है। मायामी जैसे शहरों में जहां वर्ल्ड कप के मैच होंगे, वहां ज्यादा गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है, तो हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं। हम तीन फुटबॉल सपोर्टर्स को हीट चैम्बर में लेकर आए, ये देखने के लिए कि गर्मी में टूर्नामेंट के दौरान बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है।
4: ये बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था। मैं थका, थोड़ा चिड़चिड़ा और सुस्त महसूस कर रहा हूँ और नींद भी आ रही थी। तो हाँ, मुझे उन फैंस के लिए सच में बुरा लग रहा है जो इतनी गर्मी में स्टैंड्स में बैठेंगे।
3: सब बहुत करीब था, दम घुट रहा था। आप इसे लेकर कितने चिंतित हैं कि फैंस इस समस्या से कैसे निपटेंगे?
5: फैंस खेल शुरू होने से घंटों पहले शहर या स्टेडियम में आ सकते हैं, तो फैंस पर तनाव रहेगा, इसीलिए मैं परेशान हूं और मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि वो छाया में रहे और पानी पीते रहें।
3: एक स्टेटमेंट में फीफा ने कहा कि वो खिलाड़ियों, रेफरीज, फैंस और स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए कमिटेड है। खेल के दौरान खिलाड़ियों और फैंस को किसी भी जोखिम और चोट से बचाने के लिए बोतलों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है और कहा गया है कि स्टेडियम के अंदर पानी की बोतलों की कीमत हर इवेंट में फिक्स ही रहेगी। फैंस ग्रुप्स और प्रोफेसर ओली जे जैसे हेल्थ एक्सपर्ट फीफा से बोतलों पर लगाए गए बैन के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी आपको अनकंफर्टेबल तो करती ही है, साथ ही सेहत के लिए भी खतरनाक है।
0: ये दिक्कत दूर नहीं होने वाली बल्कि और खराब होगी, इसलिए हमें ध्यान से सोचना होगा कि कैसे विज्ञान का इस्तेमाल कर हम इस बढ़ते तापमान से निपटने का तरीका ढूंढें। ये ध्यान देना होगा कि ये टूर्नामेंट जारी रह सके, लोग अपने पसंदीदा खेल का लुत्फ उठा सकें, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा करते समय वो अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करें।
3: फैंस के लिए मुश्किल समय खत्म हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप में मौजूद लोगों के लिए गर्मी ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बीबीसी संवाददाता कैथी गॉर्नल की रिपोर्ट।
2: और जब अफगान लोग शरण लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, तो वो अपने साथ काबुली पुलाव जैसे पारंपरिक और पसंदीदा डिशेस लेकर गए। पाकिस्तान सरकार ने कई अफगानी लोगों को वापस उनके वतन भेज दिया है। अफगान जब अपने देश लौट रहे हैं तो वो एक खास चीज लेकर जा रहे हैं, वो है मसालेदार बिरयानी। अब ये अफगानिस्तान में लोगों को पसंद आ रही है।
6: नमकीन चावल खाने वाले अफगान शहरी अब मिसालेदार बिरयानी के भी दिलदादा हो गए हैं। अफगानिस्तान वापस जाने वाले नौजवानों ने काबुल में एक रेस्टोरेंट कायम किया है जहां बड़ी तादाद में लोग बिरयानी खाने आते हैं।
7: एक साल हो रहा है और स्टार्टिंग जो है एक रेडी से स्टार्ट की, जहाँ पे काबुल में उसको कराची के

0: थे रेडी को, तो रेडी से स्टार्ट किया, तो अभी माशाल्लाह से रेस्टोरेंट 7-8 बंदे तो सिर्फ वेटर्स हैं।
1: ये नौजवान पाकिस्तान के शहर क्वेटा में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और इसी दौरान उन्होंने बिरयानी पकाने का हुनर भी सीखा है और अब वो इसी हुनर का इस्तेमाल अपने वतन में कर रहे हैं।
0: लोग काफी पसंद करने लगे और दिन के अगर बताए तो 500 से 600 लोग आ जाते हैं और ये आते रहते हैं। कोई डिलीवरी के मतलब थ्रू हमारी चीजें लेते हैं, कोई ऐसे ही रेस्टोरेंट आकर चीजें लेते हैं। तो
1: अफगानिस्तान में बेशतर लोग सिर्फ नमक या इंतहाई कम मिसाले वाली डिशेस पसंद करते थे, लेकिन मिर्च मिसालों से भरपूर बिरयानी का जायका अब उन्हें पसंद आया है।
2: बिरयानी से खास न चले
3: बिरयानी अफगानिस्तान में पहले नहीं चलती थी। जब से तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान से अफगान वापस आए हैं, तब से बिरयानी का कारोबार अरूज पर है।
2: महाजर शुरू से
1: काबुल में महदूद सतह पर बिरयानी पहले भी खाई जाती थी, लेकिन अब जगह जगह बिरयानी फरोख्त हो रही है।
3: जो भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्हें रोजगार का कोई इशू नहीं, खासकर कुकिंग का काम हमें भी जरूरत है, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा।
2: जरूरत जरूर इंशाल्लाह बेकार न पाएगी।
1: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिसालेदार बिरयानी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान का जायकेदार काबली पुलाव पाकिस्तान में अब भी बहुत पसंद किया जाता है।
4: और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। आपको ये भी बता दें, जल्द आने वाला है बीबीसी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर का नया वीडियो अवतार, दिन भर पॉडकास्ट।

0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee applications.

0: अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदण लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757 मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स
1: रेशम सिद्धू नाल रेट जरूर चेक करो तसल्ली बख्श ते तेज सर्विस लंबे समय तो भरोसे योग सेवावां लई जाने जांदे हन अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिद्धू 403-607-4208 अकाल फॉरन एक्सचेंज
2: पूरा साल हो गया गाना सुनदी नूं बस कैलगरी च कार लैण दियां फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है उना दे आउण तो पहलां मैनू कार चाहिदा है
3: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार इक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
2: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल इक वार जरूर गलबात करो जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445
4: ओहो आज फिर नहीं लोड मिलया
5: की होया
4: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन
5: ओहो रह गए ना फिर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
6: हेलो गोपी शुक्रिया तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए
7: ओ सारे डरदे नहीं चकदे उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे समान नूं हाथ पावे
6: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसे झंझट दे मूव कर जांदे आ
0: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 403-870-1790 403-870-1790 स्टार मूवी नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है